अले अंतुमि हम अमेरिका तो ने वा वंतो तने फवेलाए वे ए ठीके लेके ओखलावे बावा पचरिया अठू वेरा कमरे मरे मरे मरे मरे रो फवेला का यो रेडियो ही।